सुबह सुबह शाम भगवान का दर्शन अच्छा लगता है, संध्या काल में साईं दर्शन अच्छा।

साई राम, आवर हम्बल प्रणाम्स एट दी लोटस फीट ऑफ आवर भगवान स्वामी. वी आर सो ग्रेटफुल टू स्वामी फॉर हैविंग गिवन अस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड माय ब्रदर राजेश टू परफॉर्म इन द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ स्वामी वार. थैंक यू स्वामी साई राम. फर्स्ट वी विल स्टार्ट द कॉन्सर्ट विथ द कॉम्पोजिशन ऑफ श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन द रागम हंसध्वनि set to Aditalam, the song Vatapi Ganapatim.

था कि ये सॉन्ग गाऊं बट मुझे मौका नहीं मिला. आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिंग दिस सॉन्ग. सो एंड दिस इज माय फर्स्ट शो आफ्टर द वॉइस. सो आई रियली थैंक गॉड साईं बाबा की मुझे यहां पर बुलाया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, गाने का मौका मिला. सो

0: थैंक यू।
1: मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि आई कैन फील साईं बाबा सिटिंग एंड गिविंग मी ब्लेसिंग्स। सो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई एम गेटिंग गूज़बम्स व्हेन आई एम सिंगिंग दिस सॉन्ग। सो

मुझे एक चीज का रिग्रेट हमेशा रहेगा कि मैं साक्षात बाबा के सामने लेक बहुत बहुत मन था मेरा बहुत पहले से कि मैं आऊंगा, मैं मुझे सुनाना है गाना। आज मुझे मौका मिला है, कहीं ना कहीं मुझे भी फील हो रहा है कि लाइक काश और पहले आ चुका होता मैं यहां पर।

इसी गाने से मुझे एक शेर याद आया। दीवानों की नजरों से खुदा देख रहा है, दीवानों की नजरों से

0: गुरुदेवा, आई एम कनक नायका. विल यू प्लीज इनिशिएट मी विथ योर मंत्रोपदेशा एंड एक्सेप्ट मी एज योर शिष्या.
1: मीने किया कौन मंत्र हेळकोडले? व्हाट कौन मंत्र कैन आई टीच यू?
0: कौन मंत्र? कौन मंत्र? आई एम ब्लेस्ड ओ रिवियर्ड गुरु. आई शेल रिसाइट द मंत्र गिवन बाय यू फ्रॉम दिस वेरी मिनिट.